0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है एक नए दिन, एक नई शाम और एक नए शो में. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राज के वुरुंजुरी और वुई वुरुंग लोगों को सम्मान के साथ प्रदान करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. चलिए तो सबसे पहले आज की रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट आने वाली है. सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 19वें दिन का अपडेट आपके लिए लेके आएंगे. कौन सी टीमें जीती, कौन बाहर हुआ और किन नए रिकॉर्ड्स ने सबका ध्यान खींचा. इसके बाद आज 30 जून से ऑस्ट्रेलिया में बिजली बिल कम करने और सोलर एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के लिए नई योजनाएं शुरू हो रही हैं. सोलर शेयर ऑफर और विक्टोरिया की मिड डे एनर्जी सेवर जैसी स्कीमें आपके शहर में कैसे लागू होंगी और आपको इससे क्या फायदा मिल सकता है, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं. फिर मिलेंगे मोहिंदर सिंह से जिन्होंने अपना लंबा करियर छोड़कर न्यू साउथ वेल्स करेक्टिव सर्विसेज में साउथ एशियन कम्युनिटी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका अपनाई है. और अंत में स्टोरीज फ्रॉम इंडिया का एक खास अंश आज, जिसमें हम दिल्ली के उमेर की कहानी आपको सुनाएंगे जो कम चर्चित ऐतिहासिक स्थलों को डॉक्यूमेंट कर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारी धरोहर समय के साथ खो न जाए. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी और एक सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के शो की न्यूज फ्लैश के साथ. चलिए न्यूज फ्लैश सुनते हैं और फिर वापस आते हैं. मंगलवार 30 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ट्रेजरर जिम चार्मर्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की कीमतें घटकर 2022 की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंचना एक अच्छी खबर है. ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अनुसार पिछले हफ्ते देश भर में अनलीडेड पेट्रोल की औसत कीमत 6 सेंट से अधिक घटकर प्रति लीटर $1.60 के नीचे आ गई. ईंधन की कीमतों में इस गिरावट के बाद कल यानी 1 जुलाई से फ्यूल एक्साइज बढ़ने से पहले बड़ी संख्या में ड्राइवर्स पेट्रोल स्टेशन का रुख कर रहे हैं. फ्यूल एक्साइज पर मिलने वाली 3 महीने की राहत 30 जून को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 जुलाई से 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. हालांकि अब ये छूट 32 सेंट की जगह 16 सेंट प्रति लीटर होगी, जिसके बाद इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. जिम चार्मर्स ने कहा है कि सरकार का ये फैसला सही है. ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन यानी ACCC ने अमेजन प्राइम वीडियो के खिलाफ फेडरल कोर्ट में कानूनी कार्रवाई दर्ज की है. ACCC का आरोप है कि सर्विस के कुछ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के कारण उपभोक्ताओं के सामने अब या तो ज्यादा पैसे देने या फिर विज्ञापनों के साथ सर्विस इस्तेमाल करने का विकल्प रह गया, जबकि उन्होंने शुरुआत में जिस सर्विस के लिए साइन अप किया था उसमें एड शामिल नहीं थे. ACCC चेयर गीना कैसगॉटलिप का कहना है कि लगभग 2 वर्षों से कंपनी ने ऐसे 5 अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स का इस्तेमाल किया जिससे लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर्स प्रभावित हुए. अमेजन प्राइम वीडियो के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कंपनी इस मामले की समीक्षा कर रही है और जांच के दौरान उसने ACCC के साथ पूरा सहयोग किया है. नर्सेज और मिडवाइफ्स हेल्थ केयर व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे हर साल $7.7 बिलियन तक की बचत हो सकती है जो प्रिवेंटेबल हॉस्पिटलाइजेशंस को रोककर संभव है. इंडस्ट्री फेडरल सरकार पर दबाव बना रही है कि मेडिकेयर सेटिंग्स में बदलाव किया जाए जिसमें रिमोट और रीजनल एरियाज में चलने वाले नर्स लेड क्लिनिक्स को बल्क बिलिंग इंसेंटिव्स का फायदा देने की अनुमति शामिल है. वो 2024 के सेक्टर रिव्यू के रिकमेंडेशंस को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं. शैडो मिनिस्टर फॉर रीजनल हेल्थ डॉक्टर एन वेबस्टर ने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था रूरल एरियाज में हेल्थ केयर पहुंच के लिए एक बड़ी बाधा है. लेबर सांसद जॉर्ज बर्न्स ने रॉयल कमीशन ऑन एंटी सेमिटिज्म एंड सोशल कोहिजन के सामने पेश होकर एक ज्यूइश ऑस्ट्रेलियन के रूप में अपने अनुभवों पर गवाही दी है. जॉर्ज बर्न्स जो इनर

0: मेलबर्न की सीट मैकनमरा का प्रतिनिधित्व करते हैं ने पहले कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद का समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें धमकियां मिली हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ी हैं। कमीशन को दिए गए एक रिटर्न सबमिशन में जॉश बर्न्स ने कहा है कि हेट लॉस को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि नफरत फैलने से रोका जा सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एबोला का एक जानलेवा आउटब्रेक अब चौथे प्रोविंस तक फैल गया है जो साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सीमा से लगा हुआ है। हौतोले अधिकारियों ने संक्रमण के फैलाव की चेन को ट्रेस करने और कॉन्टैक्ट की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई तब शुरू हुई जब ईटूरी के कैपिटल बुनिया से आए एक ट्रैवलर में केस की पुष्टि हुई थी। एक हेल्थ सोर्स ने AFP न्यूज एजेंसी को बताया है कि उस व्यक्ति की बाद में मौत हो गई। वहीं देश के नॉर्थ ईस्ट शहर बेनी अपने पहले एबोला सर्वाइवर का जश्न मना रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अब तक लगभग 1300 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं जिनमें 360 मौतें हुई हैं। और अब खबर भारत से। भारत और अमेरिका के बीच प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और दोनों देशों के अधिकारी बचे हुए मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में ट्रेड टॉक्स तेज हुई हैं और दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सर्जियो गोर के अनुसार ये समझौता दोनों देशों के कारोबार के लिए अधिक स्पष्टता और स्थिरता लाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 दशकों में इंडिया अमेरिका का बायलेटरल ट्रेड लगभग $20 बिलियन से बढ़कर $220 बिलियन हो गया है। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज फ्लैश के बाद एक बार वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 19वें दिन का अपडेट। कौन सी टीमें जीती, कौन बाहर हुआ और किन नए रिकॉर्ड ने सबका ध्यान खींचा, आइए सुनते हैं भव्य पांडे की ये रिपोर्ट।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 19वें दिन में 3 बेहद रोमांचक नॉकआउट मुकाबले देखने को मिले जिसमें जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे दिग्गज टीमें पेनाल्टी शूटआउट में हारकर बाहर हो गईं, जबकि ब्राजील ने अंतिम विसल से कुछ ही पल पहले जीत दर्ज की। मैं हूं भव्या पांडे और ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 19वें दिन का पूरा अपडेट। 5 बार रही चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है और ये जीत स्टॉपेज टाइम में आए डिसाइडिंग गोल से मिली है। जापान ने शुरुआत में ब्राजील को चौंका दिया जब कायशु सानू ने डिफेंस की गलती का फायदा उठाकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल दागा। हालांकि ब्राजील ने 56वें मिनट में कैसेमीरो के जरिए बराबरी की और फिर गैब्रियल मार्टिनेली ने स्टॉपेज टाइम में गोल कर सेलेकाओ को अंतिम 16 में पहुंचा दिया जहां उनका मुकाबला कोट डिवा और नॉर्वे के विजेता से होगा। उधर मैसाचुसेट्स में 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने सनसनीखेज तरीके से बाहर कर दिया और ये मुकाबला टूर्नामेंट का पहला पेनल्टी शूटआउट था जो 4-3 से खत्म हुआ। पैराग्वे ने पहले हाफ के आखिरी पल में जूलियो एनसीसो के हेडर से बढ़त बनाई लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में जर्मनी ने बराबरी कर ली। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी का संभावित विजयी गोल VAR के जरिए रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों की ओर से चूकी हुई पेनल्टी के बावजूद पैराग्वे ने धैर्य बनाए रखा और शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की की। अब उनका सामना फ्रांस और स्वीडन के विजेता से होगा। एक और रोमांचक मुकाबले में 6 रैंकिंग वाली मोरक्को और 7 रैंकिंग वाली नीदरलैंड्स आमने सामने थी। कोडी गैक्पो ने दूसरे हाफ के अंत में नीदरलैंड्स को बढ़त दिलाई लेकिन मोरक्को ने स्टॉपेज टाइम के गहरे क्षणों में गोल कर मैच को एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा दिया। इसके बाद मुकाबला दूसरे पेनल्टी शूटआउट में गया जहां दोनों टीमों से कई पेनल्टी चूकने के बावजूद मोरक्को ने 2-3 से जीत हासिल की और अब उसका सामना कनाडा से होगा। सोकरूस जब इजिप्ट के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की जगह के लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन वॉलपैटो ने कहा कि इटली से ऑस्ट्रेलिया की ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व बदलने को लेकर मिली आलोचना ने उन्हें और मजबूत बनाया है।
2: You know, I say everything, but you know, sometimes there's going to be stuff said about you. There's going to be good things, there's going to be bad things, but I feel like as a footballer, you just got to be resilient and you know, and sometimes you can use it as fuel as well, and I like to use that as well.
1: Socceroos ka mukabla Egypt se shanivar ko hoga, jo SBS aur SBS On Demand par 3 AM AEST se live dikhaya jayega. Jeetne wali team ka samna Argentina aur Cabo Verde ke विजेता से होगा। आने वाले बुधवार को होगा टूर्नामेंट का 20वां दिन। कोट डिवा और नॉर्वे पहली बार आमने सामने होंगे और राउंड ऑफ 16 की जगह दाव पर होगी। फ्रांस और स्वीडन लगभग एक सदी बाद वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे। वहीं को होस्ट मेक्सिको सिटी में इक्वाडोर से भिड़ेंगे, जहां घरेलू दर्शकों का समर्थन उनके साथ रहेगा। आप सुन रहे थे फीफा 2026 के 19वें दिन का अपडेट भव्या पांडे के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हर पल को लाइव और फ्री देखें SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
0: फीफा अपडेट सुना आपने अभी अभी और SBS हिंदी पर आपको हर दिन का अपडेट हिंदी में मिल रहा है हमारे वेबसाइट पे, और ये पॉडकास्ट आप जरूर सुनिए अगर आप एक फुटबॉल फैन हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस समय वक्त हो गया है एक एड ब्रेक का। एड ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे, और जो अगली रिपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजली की बचत करना चाहते हैं, क्योंकि आज से ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में एक नई योजना आई है। क्या है ये योजना और आप कैसे उसमें अपने बिजली बचा सकते हैं, बिजली का बिल पे राहत पा सकते हैं, जानेंगे इस एड ब्रेक के बाद। मंगलवार 30 जून की खास खबरों के साथ मैं
3: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: एक डॉक्टर होने के नाते मैं सारा दिन अलार्म सुनती हूँ, मॉनिटर के, कॉल के बटनों के, पर एक अलार्म है जो केवल आप सुन सकते हैं, आपके भीतर का। मरीज और उनके प्रियजन उन पहले लोगों में हो सकते हैं जिनकी नज़र में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए यदि आप अस्पताल में हैं और महसूस करते हैं कि आप या आपके किसी प्रियजन की हालत बिगड़ रही है, तो याद रखें, आपकी आवाज़ मायने रखती है। न्यू साउथ वेल्स के किसी भी पब्लिक अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में आपकी चिंताएं व्यक्त करने के लिए रेज इट प्रक्रिया का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को समझने के लिए health.nsw.gov.au/raiseit पर जाएं। हम हैं यहाँ आपके लिए।
7: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
8: They track, they target, prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आइए अब अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिजली बिल कम करने और सोलर एनर्जी का बेहतर उपयोग करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं आज से, और फेडरल सरकार की सोलर शेयर ऑफर के तहत कुछ राज्यों में दिन के दौरान मुफ्त बिजली का समय दिया जा रहा है, जबकि विक्टोरिया में अलग से मिड डे एनर्जी सेवर योजना लाई गई है। ये योजनाएं आज से शुरू हो रही हैं और इनका मकसद हाउस होल्ड्स को राहत देना है और पीक डिमांड के दबाव को करना है। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी रिपोर्ट।

0: देश के पूर्वी हिस्से में रहने वाले कुछ ऑस्ट्रेलियंस अब हर दिन 3 घंटे तक मुफ्त बिजली पा सकेंगे। ये सुविधा फेडरल सरकार की 30 जून 2026 से शुरू हुए सोलार शेयरर ऑफर योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा घरों तक उस समय सोलार पावर पहुंचाना है जब दिन में इसकी उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है। ये योजना न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में रहने वाले किराएदारों और मकान मालिकों के लिए होगी। ये सभी इलाके डिफॉल्ट मार्केट ऑफर यानी डीएमओ के तहत आते हैं। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर द्वारा तय किया गया डीएमओ यानी डिफॉल्ट मार्केट ऑफर वो अधिकतम कीमत है जो एनर्जी रिटेलर्स, रेसिडेंशियल और स्मॉल बिजनेस ग्राहकों से स्टैंडिंग ऑफर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वसूल सकते हैं। बाकी स्टेट्स और टेरिटरीज में इसके लिए अपने अलग अलग सिस्टम्स हैं।
1: तो इस सुविधा के लिए कौन पात्र है, आइए जानते हैं। हाउसहोल्ड्स को अपने पास खुद का रूफटॉप सोलार होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जरूर हैं। सबसे जरूरी शर्त ये है कि उन्हें इन 3 निर्धारित क्षेत्रों में से किसी एक में रहना चाहिए, तभी वे इस सुविधा के लिए पात्र होंगे, और उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें ऐसे एनर्जी रिटेलर के साथ होना चाहिए जिनके लिए सोलार शेयरर ऑफर देना जरूरी है, यानी डीएमओ क्षेत्र में ऐसे रिटेलर जिनके 1000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं। साथ ही उनकी सप्लाई एम्बेडेड नेटवर्क के जरिए नहीं होनी चाहिए।
0: तो बिजली के मुफ्त घंटे कब है? इस योजना के तहत लाभ पाने वाले घरों को हर दिन 3 घंटे की समय सीमा के दौरान अधिकतम 24 किलोवाट आवर मुफ्त बिजली मिल सकेगी। न्यू साउथ वेल्स और साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में ये समय ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक होगा। वहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। ये ऑफर अपने आप लागू नहीं होगा। जो घर इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको अपने एनर्जी रिटेलर के जरिए आवेदन देना होगा।
1: तो ऐसे में मुफ्त बिजली के घंटों का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए, आइए जानते हैं। कुछ समय पहले जनवरी में एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोविन ने कहा था कि सोलार शेयरर ऑफर का मकसद हमारी सोलार जनरेशन का पूरा फायदा उठाना है। उन्होंने कहा कि उन घरों के लिए सीधे बिल में बचत देगा जो इस योजना में साइन अप करते हैं और अपनी एनर्जी यूज को जीरो कॉस्ट पावर पीरियड में शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही शाम के पीक डिमांड पर दबाव भी कम होगा जिससे नेटवर्क और सिस्टम सिक्योरिटी कॉस्ट्स घट जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार सोलार शेयरर ऑफर के लिए एलिजिबल हाउसहोल्ड्स इस योजना का फायदा दिन के 3 घंटे की समय सीमा के हिसाब से अपनी प्लानिंग करके उठा सकते हैं। ये सुझाव दिया गया है कि जहां सुरक्षित और संभव हो उस फ्री पावर पीरियड में बड़े अप्लायंसेस चलाए जाएं। इनमें हीटिंग और कूलिंग, क्लॉथ ड्रायर्स, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स और ईवी चार्जर्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी सुझाव दिया गया है कि रोजमर्रा के काम जैसे लॉन्ड्री या डिश वॉशिंग इसी समय के दौरान पूरे कर लिए जाएं।
0: तो क्या अन्य राज्य और क्षेत्र भी ये सुविधा लेकर आएंगे? विक्टोरिया में जहां डीएमओ यानी डिफॉल्ट मार्केट ऑफर लागू नहीं होता, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो अक्टूबर से मिड डे एनर्जी सेवर शुरू करेगी। इस योजना के तहत हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच फ्री पावर विंडो दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक विक्टोरिया के निवासी 1 अक्टूबर तक अपने एनर्जी रिटेलर से संपर्क करके साइन अप कर सकते हैं। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस योजना से एक घर सालाना लगभग $139 से $429 तक बचत कर सकता है, जबकि ईवी ओनर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ओनर्स अगर अपने व्हीकल्स को फ्री पावर विंडो के दौरान चार्ज करते हैं तो उन्हें लगभग $674 की अतिरिक्त बचत हो सकती है। फेडरल सरकार ने यह भी कहा है कि वो सोलर शेयरर ऑफर या इसके किसी इक्विवेलेंट ऑप्शन को अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। SBS न्यूज के विंग क्वांग की ये रिपोर्ट भव्य पांडे के सहयोग से SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
2: हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील और अब समय हो गया है हमारी अगली रिपोर्ट का। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने कई साल पहले एक ऐसा रास्ता चुना, वो भी अपने सालों से जमे हुए कैरियर से बिल्कुल अलग। हाल ही में उन्होंने न्यू साउथ वेल्स करेक्टिव सर्विसेज में साउथ एशियन कम्युनिटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उन्हें। आइए मिलते हैं मोहिंदर सिंह जी से और उनसे ये बातचीत की है SBS हिंदी के स्वाति शर्मा ने।
1: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। जब हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय लोगों के लिए करियर की बात करते हैं तो जहन में आते हैं चंद ही रास्ते, जैसे कि IT, हेल्थ केयर, अकाउंटिंग, ट्रांसपोर्ट या कंस्ट्रक्शन इत्यादि। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे रास्तों पर चले हैं जिनके बारे में हमारे समुदाय में बात तक नहीं होती। तो आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही शख्स मोहिंदर सिंह से, जो पिछले 10 साल से न्यू साउथ वेल्स करेक्टिव सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं और आज सिडनी की एक बड़ी जेल में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग यूनिट के सुपरवाइजर हैं। हाल ही में उन्हें कम्युनिटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह कहानी है एक ऐसे प्रवासी की जिसने वो रास्ता चुना जो हमारे ज्यादातर परिवार कभी अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं। मोहिंदर जी, SBS हिंदी के साथ

0: करने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2011 में आप ऑस्ट्रेलिया आए, तो आने के बाद आपने पहली नौकरी या काम क्या किया, और करेक्शंस में जाने से पहले और कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए, उन सब के बारे में बताइए।
1: हाँ जी, सभी SBS हिंदी सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार वाली सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं 2012 में आ गया था जी ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेट हुए थे मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक साल का बेटा था। जब हम इधर आए ऑस्ट्रेलिया में, तो तब भी जॉब्स तो बड़ी टफ थी, बट आए मुझे उस समय हमारी टेम्पररी रेजिडेंसी थी उस, मैं वॉगा में रुका था जी 2 साल। वहां रुकने के बाद फिर मैं 2014 में माइग्रेट हुआ, मतलब सिडनी मूव हुआ था, जब अपनी पूरी रेजिडेंसी मिल गई थी, PR हो गई थी मेरी। उसके बाद मुझे, मैं सिडनी उसमें था, सिडनी बसेस में था, मुझे इस जॉब के बारे पता चला। हम काफी लोग एक साथ, हम लोगों ने, सब लोगों ने अप्लाई किया और मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था एज अ कैजुअल करेक्शन ऑफिसर। हाँ जी।
0: फिर 2015 में आपने एक ऐसा फैसला लिया जिसने शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दिया। करेक्टिव सर्विसेज में आपने करियर क्यों चुना, किस चीज ने खींचा आपको इस तरफ?
1: इस जॉब में ना, जब मैं देख रहा था तो मुझे काफी लाइक ग्रोथ नजर आ रही थी बाहर से, थोड़ा सा मुझे लग रहा था चैलेंजिंग होगा, जैसे हम सब की एक हम सब मींस सब देशियों की और सब पीपल फ्रॉम सब कॉर्नर, हमें लगता है अभी जो जेल डिपार्टमेंट, इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट इनटू इट, और वेरी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, डिफिकल्ट होंगी, अंदर बड़ी डिफिकल्टीज होंगी। तो वो सारे मिथ जो थे मुझे भी थे, बट मैंने कहा चलो मैंने रिस्क लिया, हम सब लोग चलो ज्वाइन करते हैं, चेक करते हैं ना, चेक करके देखते हैं अभी कैसी जॉब।
0: तो भारतीय परिवारों में खासतौर जेल और सुधार सेवाओं को लेकर एक अपनी ही धारणा होती है, तो जब आपने घर में बताया कि अब इस क्षेत्र में आपने काम करना है, तो उनकी प्रतिक्रिया दोस्तों की और परिवार की कैसी थी?
1: मेरी वाइफ तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी जब मैंने बताया, तो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं इंडिया में बताया था, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था। तो मुझे मेरी वाइफ ही कह रही थी तू कैजुअल क्यों आ रहा है, तू फुल टाइम जॉब कर रहा है, अच्छी वाली तेरी फुल टाइम जॉब चल रही है, तू छोड़कर। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने ना कुछ और करना है, कुछ और डिफरेंट करना है। तो उसके चक्कर में मैंने फिर अपनी फुल टाइम जॉब छोड़कर कैजुअल पार्ट टाइम शुरू किया। फिर देन उसके बाद मुझे इन्होंने, फिर मुझे 8 महीने लगे, then I got my permanent position, like substantial position मिल गई थी मुझे। तो बस यही motivation, कुछ करना है, कुछ community के लिए कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है, it's another way of serving the community also ना।
0: तो आपके मकसद के सामने किसी और का कोई रोकना काम नहीं आया, आपने अपनी मान ली।
1: मैंने कई बार लिखा होता ना, किस्मत में आपने जाना होता है, तो आप like you are so passionate, तो आपको सब पॉजिटिव ही नजर आ रहे होते हैं।
0: तो महेंद्र जी, जैसे आपने अपनी बात कही, वैसे ही बहुत सारे लोगों की सोच बहुत सीमित होती है जेल के काम के स्कोप को लेकर, तो आप अपने रोजमर्रा के काम के बारे में बताइए कि आपकी लाइफ में एक दिन कैसा दिखाई देता है।
1: आजकल मैं मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग यूनिट होता है, MHSU कहते हैं उसको, रन कर रहा हूँ, आई एम सुपरवाइजर देयर। तो हर दिन डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि दिस इज नॉट हमारे कोई, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो जेल के अंदर कैदियों को है, दिस इज अ ऑल ओवर वर्ल्ड प्रॉब्लम। आप देख ही रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस, DV जिसे हम कहते हैं, और मेंटल हेल्थ, इट्स वन ऑफ द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज। तो उसकी वजह से हमारे पास जो भी कोई आता है, तो वो टिक करते हैं, आप बताते हैं स्क्रीनिंग में दैट हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, हमें ये इश्यूज हैं, हमें लाइक सिजोफ्रेनिया है, हमें बाइपोलो, मतलब जो भी उनकी मेंटल इश्यूज होते हैं, वो उस जो स्क्रीनिंग नर्स है उसे बताते हैं। तो फिर उसके हिसाब से उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है, हमारी यूनिट की तरफ फिर भेजा जाता है। जब हमारी यूनिट में वो लोग आते हैं, तो जिस दिन पहले दिन आते हैं, तो उसकी पूरी फुल फ्लेज एक बिग इंटरव्यू होती है हमारी, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जैसे आपने बताया, उसमें हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, मतलब काफी है उस दिन पर, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होगा, साइकेट्रिस्ट होगा, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग यूनिट की नर्स होगी, नर्सिंग यूनिट मैनेजर होगा, एक मेरे जैसा एक सुपरवाइजर होता है, हम सब लोग, और एक वेलफेयर ऑफिसर, हम सब लोग एक साथ बैठकर उसको स्क्रीन करते हैं, उसकी इंटरव्यू लेते हैं, अभी उसको कब से ये प्रॉब्लम है, बचपन से प्रॉब्लम है, वो बाहर इसकी कौन से मेंटल हॉस्पिटल के पास जाता है, कहाँ से उसकी मेडिसिन चल रही है, किसको, कौन से साइकेट्रिस्ट को वो बाहर मिल रहा है, और कौन कौन सी उसकी मेडिसिन है, उसके हिसाब से फिर उसको असेस करते हैं। मतलब बेसिकली उसको ये हमने देखना होता है, उसको मेंटल हेल्थ का इश्यू आ रहा है कि उसमें बिहेवियर इश्यूज है, क्योंकि दे आर टू डिफरेंट पाथवेज, टोटली डिफरेंट पाथवेज। पीपल समटाइम्स, पीपल हैव मेंटल हेल्थ, बट मेनली दे हैव बिहेवियर इश्यूज, दे डोंट हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो फिर हमको उसके हिसाब से उसकी कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट, एक दिन नहीं होती, उसको वॉच मतलब उस पर होता है।

0: at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: अब आपका अब तक का कैसा रहा है?
2: मुझे बहुत अच्छा लगा. ये एक नॉर्मल जॉब की तरह जॉब है. हम यूनिफॉर्म, यस इट्स अ यूनिफॉर्म जॉब. मैं अपनी लाइक यू नो अपना रिलीजन, हमें पूरी उसको कहते हैं, हमें आजादी है अपना पूरा. जैसे आप अपना अपने पगड़ी बांधनी है डिपार्टमेंट, इवन नाउ हमें जो अपनी टर्बन है वो भी डिपार्टमेंट एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म. जैसे हमें ट्राउजर शर्ट्स मिलती हैं, बाकी चीजें मिलती हैं, तो हमें टर्बन भी डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होकर मिलती है, द नेवी ब्लू टर्बन. विच मैं कहूंगा उस टर्बन की वजह से ही मुझे अब प्राउड फील होता है इतना ज्यादा. भी मुझे जो इस साल एम्बेसडर का अपॉर्चुनिटी मिली है रिप्रेजेंट करने की डिपार्टमेंट को, आई फील सो प्राउड ऑफ माई कल्चर, ऑफ माई बैकग्राउंड.
1: जी, उसी के बारे में मेरा अगला सवाल भी है आपसे कि अब आप साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं. इस रोल की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें नया होगा, क्या अलग करेंगे आप अपने पिछले रोल से?
2: इसमें जैसे अकेला रोल नहीं है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं इस रोल में जब आपको ऐसा चूज किया जाता है. तो जो नए लोग हैं वो कोई सोच रहे हैं इस जॉब के बारे में, क्योंकि आपने जैसे पहला क्वेश्चन किया था, कई लोगों को हमारी इस जॉब के बारे में पता ही नहीं है भाई ये भी डिपार्टमेंट है. तो जैसे आपको देखते हैं, जैसे वो मेरे को देखते हैं, मेरे जैसे लोगों को वहां देखते हैं, तो वो उनको एक तरह जो जिसने नया स्टार्ट करना उसको इनकरेजमेंट मिलती है, एक ट्रस्ट सा मिलता है, यार वो भी कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ. जैसे नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यू कैन बी अ गुड लाइक यू नो मेंटर टू ऑल दोज न्यू रिक्रूट्स. उनको टीच करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द एवरीडे जॉब. एक फ्रॉम अ नॉर्मल जॉब तो मैंने ये स्टार्ट की. मेरा डिफरेंट करियर था, मेरा टोटली डिफरेंट करियर था इंडिया में. जब हम मूव हुए, माइग्रेट हुए, आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है. तो मैं वो अपनी डिग्रीज छोड़कर, बिकॉज मुझे था कुछ डिफरेंट करना है. तो ये मैं कहूंगा इस कंट्री की, आई विल बी थैंकफुल टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री ऑस्ट्रेलिया. आप यहाँ पर मतलब कभी भी कोई भी प्रोफेशन छोड़कर कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो.
1: तो आज ऑस्ट्रेलिया में जो लोग अपना करियर तय करने की तैयारी में हैं, उनके लिए इस फील्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और क्यों उनके लिए करेक्शन एक अच्छा करियर हो सकता है, कौन सी भूमिकाएं हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं?
2: हाँ जी, तो इसके लिए हमारी ना गवर्नमेंट की एक साइट बनी हुई है, आई वर्क न्यू साउथ वेल्स. उस पर जाकर आप अगर करेक्शन ऑफिसर ढूंढेंगे उस पेज में, आपको इस तरह की जॉब्स की वो आ जाएंगी, एडवर्टीजमेंट्स आएंगी. फिर इनका फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर कॉन्टिन्यूसली एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, ठीक है. फिर वो अपना चूज कर सकते हैं भी, जैसे उन्होंने करेक्शन ऑफिसर एज अ करेक्शन ऑफिसर, जैसे मैं हूँ कस्टोडियल ऑफिसर, वैसे आना है कि कम्युनिटी करेक्शन में आना है. जो लोग जैसे हमारी तरफ से जब कैदी रिलीज हो जाते हैं, कम्युनिटी में भी उन पर सुपरविजन रखी जाती है, तो वो कम्युनिटी करेक्शन ऑफिसर होते हैं, उन्होंने वो ज्वाइन करनी है. या एज अ वेलफेयर ऑफिसर आना है, जिसको हम सर्विस एंड प्रोग्राम सेपो कहते हैं, सर्विस एंड प्रोग्राम ऑफिसर, उन्होंने उस रोल में आना है. तो काफी मतलब अंदर जैसे ना इसके नीचे इट्स अ बिग अम्ब्रेला, तो आपको काफी रोल्स मिल जाते हैं. सब काम अच्छे होते हैं, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं. तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ता है. तो यू चूज योर राइट वे पाथवे. अगर नहीं भी है तो इस कंट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती, आप उसको छोड़कर यू कैन यू नो यू डोंट हैव टू थिंक यार मैंने तो यार गलत पाथवे, तो उसको स्टॉप करके, तो आप जो आपको लग रहा है नहीं यार दिस इज नॉट गुड, चलो ये मैं करता हूँ, तो यू कैन ट्राई.
1: जी मोहिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज अपना समय देने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी कहानी से बहुत से नौजवानों को प्रेरणा मिली होगी.
2: हाँ जी, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. फिर से मैं अपने SBS हिंदी के सभी स्रोतों को थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू जी.
1: मोहिंदर सिंह जी की कहानी याद दिलाती है कि कामयाबी के रास्ते सिर्फ वो नहीं जो सबसे ज्यादा दिखते हैं, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिन पर चलने वाले कम हैं लेकिन जिनका असर बहुत गहरा हो सकता है. SBS हिंदी के लिए इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद.
3: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मैं हूं नबील और आपने अभी अभी सुनी स्वाति शर्मा की एक रिपोर्ट. और आप अगर SBS हिंदी का कोई भी ऑडियो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम को भी लाइक करें SBSHINDI के नाम से. चलिए, आज के शो में हमने पूछा था कि इस साल यानी 2026 के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और क्या आप भी अपने रेजोल्यूशन पे कायम हैं या नहीं. कुछ मैसेजेस आए, पढ़ लेते हैं. हिमलता रोहित जी लिखती हैं कि वो हर दिन सुबह 6 बजे 45 मिनट वॉक करती हैं और 3 दिन एक्सरसाइज करती हैं और वो पीछे नहीं हटी हैं.

0: स्टॉप। तो थैंक यू सो मच मैसेज भेजने के लिए। एक और मैसेज आया है चेतन शाह का सिडनी से। वो लिखते हैं कि आई टुक अ रेजोल्यूशन अर्ली दिस ईयर टू रिटायर फ्रॉम वर्क एंड आई डिड। आज उनका आखिरी दिन था और रिटायरमेंट की जो भावना है वो अभी पूरी तरह से इट्स नॉट सन्क इन येट। और वो लिखते हैं कि लेट अस सी हाउ आई फील फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। सो चेतन शाह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इतने सालों के काम के बाद आपने आज जो रेजोल्यूशन लिया था रिटायर होने का, आई एम श्योर के आगे का जीवन भी, आगे के दिन भी बहुत खूबसूरत होंगे। एक और मैसेज आया है और बड़ा ही अलग मैसेज है। क्लाइंट से ब्रजेश जी लिखते हैं कि जब से जीवन जीने की समझ आई है तब से मैंने एक रेजोल्यूशन ले रखा है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं लेना है। पूरा ना होने पर खामखा नेगेटिविटी आती है दिमाग में। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और आप भी मैसेज करिए 04397997667 पर, आपका क्या रेजोल्यूशन था और क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि साल के 6 महीने निकल चुके हैं और 6 ही महीने बचे हैं। सुनते रहिए SBS हिंदी। मैं हूं नबील, आपको मिलता हूं इस एड ब्रेक के बाद।
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम शो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसमें आज हम ट्यूसडे है तो आपके लिए लेकर आते हैं स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। फैसल फरीद की एक खास रिपोर्ट है और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उमेर की। इतिहास और हेरिटेज में रुचि रखते हैं वो और उन स्मारकों को सामने लाते हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ऐसे कम प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को डॉक्यूमेंट करते हैं और हेरिटेज वॉक्स के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि ये निशानियां समय के साथ खोना जाए। आइए सुनते हैं उमेर की कहानी स्टोरीज ऑफ इंडिया में फैसल फरीद की इस रिपोर्ट में।
9: इतिहास हर तरफ है, बस एक पारखी नजर चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इतिहासकार ही हों तभी आप इसको देख सकते हैं। एक आम इंसान भी इतिहास की निशानियों को देख और समझ सकता है। दिल्ली के निवासी उमेर एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। वैसे वो अपनी कंपनी चलाते हैं लेकिन उनकी दिलचस्पी इतिहास में हमेशा से रही। वो आम तौर पर जो स्मारक प्रसिद्ध हैं उनको नहीं, लेकिन ऐसे स्मारक और इतिहास की निशानियां लोगों के सामने लाते हैं जो खो चुकी हैं, लोग भूल चुके हैं और ध्यान भी नहीं देते। जैसे दिल्ली ही में एक 700 साल पुराना पुल जिस पर रोज ही लोग चलते होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिया कि ये पुल इस बात का साक्षी है कि बीती 7 शताब्दियों में क्या क्या हुआ। कुछ लुप्त हो चुके गेट, कुछ मस्जिद, इसी तरह तमाम पुराने इतिहास की निशानियां। ये समझ लीजिए कि दिल्ली में ही 1300 स्मारक ऐसे हैं जो चिन्हित किए जा चुके हैं लेकिन लोगों को आमतौर पर कुछ ही पता होते हैं, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा इत्यादि। कुछ इमारतें ऐसी हैं जिन्हें शासक ने नहीं बल्कि उनके करीबियों या परिजनों ने बनवाया, वो भी उस दौर का आईना है। उमेर की रुचि इन सब में कैसे हुई वे बताते हैं।
10: जी मेरा नाम उमेर है और मैं दिल्ली गुड़गांव में रहता हूँ और मैं

0: एक एजेंसी चलाता हूँ जो कि आपके जो बेसिकली फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपनीज के साथ काम करती है, पर मेरा जो रुझाव है वो हिस्ट्री के टूवर्ड्स, इतिहास के टूवर्ड्स काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं कुछ सालों से, पिछले 5-6 सालों से हेरिटेज वॉक्स करवाता हूँ, जो पुराने हमारे तारीखी इमारतें हैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, उनके बारे में वीडियोस बनाता हूँ और उनको डॉक्यूमेंट करता हूँ।
1: दिल्ली का खूनी दरवाजा, रोशन आरा का मकबरा, शालीमार बाग, राजों की बावली, अकबर के भाई की कब्र, ये कुछ स्थान हो सकते हैं जो आम जनता की नजर में उतने ना आए हों। कुछ ये भी है कि इनकी तरफ पर्यटकों का भी ध्यान कम जाता है, लेकिन उमैर इन सब को डॉक्यूमेंट करते हैं, लोगों को सामने लाते हैं, हेरिटेज वॉक में वहां लोगों को ले जाते हैं कि इससे पहले ये निशानियां खो ना जाए।
0: अब जैसे हम दिल्ली की बात करें अगर, तो दिल्ली में तकरीबन 1300 मॉन्यूमेंट हैं, बड़े छोटे, कुछ पुरानी इमारतें, मस्जिदें, कुछ पुरानी मंदिर, टोटल 1300 मॉन्यूमेंट है। पर होता है क्या है कि लोगों की नजर में हमेशा वो 5-6 जो कॉमन मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आमतौर पर लोग जाते हैं टूरिस्ट सर्किट में, वो दिखते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरा दिल्ली ही हिस्टोरिकल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कहीं भी एक पत्थर फेंकें, वो पत्थर जाकर किसी तारीखी इमारत पर ही गिरेगी। दिल्ली में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो मुझे ऐसा लगता है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए, वो है एक दरवाजा जो कि पुरानी दिल्ली के पास है, जिसे कहते हैं खूनी दरवाजा। अब खूनी दरवाजा का इतिहास ये, ऐसे तो ये है बहुत पुराना दरवाजा, बट जब 1857 की लड़ाई हुई थी तो बहादुर शाह जफर के जो बेटे हैं उन्हें वहां पर मारा गया था, तो इससे उसका नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। और ये कहा जाता है कि दारा शिकोह, जो औरंगजेब के भाई और शाहजहां के बेटे थे, उनको भी जब मारा गया था तो उसी के आसपास मारा गया था। तो खूनी दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जिसके बारे में मुझे लगता है लोगों को जानना चाहिए। दूसरा एक और मॉन्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं रोशन आरा बाग। रोशन आरा जो है वो शाहजहां की बेटी थी और ये नॉर्थ दिल्ली में है। उनका मकबरा बहुत खूबसूरत और सा मकबरा है। पहले वो गार्डन हुआ करता था जिसे आज हम रोशन आरा क्रिकेट क्लब कहते हैं। सो जो हमारा क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, बीसीसीआई, उसकी जो शुरुआत है वो रोशन आरा क्रिकेट क्लब से हुई थी।
1: ये काम उमेर का पैशन है, कोई टीम नहीं, अकेले ही लोगों से मिलकर वहां जाकर जानकारी इकट्ठा करके ये ऐसे स्मारक की लिस्ट बनाते हैं। इनके पास कोई टीम नहीं है, ये सब काम ये अकेले ही करते हैं। शौक कभी कभी जुनून बन जाता है।
0: कोई टीम तो नहीं है, ये मेरे मेरे ही सारे रिसर्च किए हुए हैं। मैं यूजुअली आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, पुरानी बुक्स, जो पुराने छोटे छोटे बुकलेट्स होते थे, उनके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो ASI के एक हेड थे मौलवी जफर हसन। मौलवी जफर हसन ने कुछ 1300 मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में डॉक्यूमेंट किए थे। मौलवी जफर हसन की जो बुक है वो बाद में पब्लिश हुई 2 वॉल्यूम्स में, तो वो मोस्टली मैं यूज करता हूँ। दिल्ली के बाहर अगर मुझे एक्सप्लोर करना है तो फिर वही बात हो जाती है कि 4-5 किताबें पढ़कर उसका रिसर्च करते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, पर वहाँ उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल, वो किस तरह से बने हैं, उनके उनकी आर्चेस कैसे हैं, उनका गुंबद कैसा है, तो वो सारी चीजें देखकर हम पता लगाते हैं कि वो क्या है, कब की है, और जो लोकल लोग वहां रहते हैं उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं उससे आराम। तो कभी ना कभी हमें वहां से कुछ लीड मिल जाता है, फिर जब वो लीड मिलता है तो उस लीड से हम आर्काइव्स में जाते हैं और फिर उसके बारे में पता करते हैं।
1: उमेर सिर्फ दिल्ली तक ही केंद्रित नहीं है, ये भारत में अब कई राज्यों में जा जा करके ऐसे स्मारक ढूंढते हैं, कहीं पर कोई निशानी मिल जाती है वो उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं। ये शौक इनको त्रिपुरा तक ले जा चुका है, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे ही स्मारक की निशानी ढूंढ निकाली। ये बात भी है, अगर वो स्मारक अपने पुराने वैभव में होता तो अब तक लोगों को पता चल चुका होता, वो तो वक्त के थपेड़ों में खो जाता है, ऐसे में उसको ढूंढना पड़ता है।
0: तो ये बहुत ही मजेदार कहानी है। मैं त्रिपुरा में था और त्रिपुरा आप जानते हैं जैसे ईस्टर्न इंडिया में आता है, वहाँ जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स थे उनके लिए जो हाथी हैं, मोस्टली हाथी जो है वो वहीं से सप्लाई होता था। तो कहा जाता है कि जब शाहजहां के

बेटों में जंग हुआ तो उनका जो एक बेटा था शाशुजा, जो उस समय बंगाल के सूबेदार थे, वो हार कर वहां से भाग कर त्रिपुरा गए और त्रिपुरा के थ्रू वो अरकान गए और वहां उनकी डेथ हो गई, वहां उनकी फैमिली मर गई, वो अलग कहानी है। पर मुझे ऐसा पता चला था कि जो त्रिपुरा के राजा का जो पैलेस था, जो पैलेस के आसपास में ही, जो राजबाड़ी हम कहते हैं, राजबाड़ी के आसपास में ही एक मस्जिद है जो कि शाहशुजा ने बनवाई थी। अब हुआ ये कि हम वहां गए ढूंढने के लिए, चार पांच चक्कर लगा लिया, पर वहां कहीं पे भी हमें वो मस्जिद दिख नहीं रही थी। और जो लोकल थे उनसे हम जब पूछते थे तो वो कहते थे कि आप एक दरगाह है वहां पे, आप उस दरगे के बारे में कहते थे, उस दरगे तक हमें भेज देते थे, बट वो दरगाह नहीं था। हमें तो वो पैलेस, सॉरी, वो मॉस्क देखना था। अब हुआ ये कि बस हम हार थक हार कर वापस जा ही रहे थे, तभी एक वहां ब्रिज था, ब्रिज के सटे हुए पे मुझे एक दीवार दिखी जो कि लखोरी ईंटे की बनी हुई थी, छोटी वाली ईंटे होती हैं, उन्हें लखोरी कहते हैं। तो लखोरी ईंटे की दीवार थी और उसमें एक छोटा सा मेहराब दिख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है। पर हुआ ये कि वो दीवार जो है वो किसी घर के बाउंड्री वॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जो हमारे ड्राइवर थे, मैंने उनसे कहा कि क्या आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम उनके घर पर आकर देखें कि ये क्या है। तो जब हम उनके घर के अंदर गए तो उनके घर के अंदर का जो वो आंगन होता है, वो आंगन जो है वो पूरे के पूरे उस मस्जिद के कोर्टयार्ड में बना हुआ था। और हमें फिलहाल वो फाइनली वो मस्जिद मिल गई और हमने उसे डॉक्यूमेंट किया और फिर पता चला कि जो एक आखिरी शाहशुजा की निशानी है, क्योंकि उनके बनाए हुए जो बाकी इमारतें हैं वो बांग्लादेश में है, तो इकलौता एक ऐसा इमारत है जो कि इंडिया में आता है, और वो हमें मिल गई। ये राजनगर बोलकर एक जगह है त्रिपुरा की, ये वहां की कहानी है जी। मैं तो क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मोस्टली काम के वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाता है, पर कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स में बाहर निकल जाऊँ और वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से जाता हूँ कि वहाँ जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो एक्सप्लोर किया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम दिल्ली, जैसे हम दिल्ली की बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली में इतना कुछ है, इतना कुछ था। हम ये भूल जाते हैं कि दिल्ली के आसपास भी बहुत कुछ था जिसके बारे में ना लोग जानते हैं ना जानना चाहते हैं, और धीरे धीरे जो हमारी विरासत है वो खत्म हो रही है। तो उसके वजह से मैं वेस्टर्न यूपी हो गया या हरियाणा हो गया, हरियाणा के बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हरियाणा में जैसे दिल्ली से मुश्किल से घंटे भर दूर एक जगह है फरुखनगर, जो कि एक बलोची नवाब, बलोचिस्तान के एक नवाब साहब थे, वो रूल करते थे। उसके आगे एक जगह, बस 15 मिनट दूर एक जगह है झज्जर, झज्जर के नवाब साहब की कहानी है कि वो शेर की सवारी करते थे, और ये कोई फोकलोर नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, और इनफैक्ट उनकी एक पेंटिंग भी है जिसमें वो शेर की सवारी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी जो रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें, ये बहुत जरूरी हुआ करती थी हिस्टोरिकली। पर होता क्या है कि जब हम मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमेशा जो जो एम्परर होते हैं, जो बादशाह होते हैं, उनके बारे में ही कहते हैं, छोटी छोटी रियासतों के बारे में हम नहीं पढ़ पाते। तो ये जो भी जगहें हैं, ये मैं ज्यादातर इन जगहों पे फोकस करता हूँ ताकि कल को जाकर, क्योंकि ये जो हमारे सारे विरासत है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, वो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन के वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से खत्म हो रहे हैं।

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: धीरे अर्बनाइजेशन की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से खत्म हो रहे हैं, टूट रहे हैं. मेरे आंखों के सामने मैंने शायद 50 मॉन्यूमेंट देखा है जो से इनक्रोच करके तोड़ दिया गया. और वो हम रोक नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत चीजें आ जाती है इस चीज में, लीगैलिटी आ जाएगी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है. तो हम सोचते अगर हम बचा नहीं सकते तो कम से कम उसे डॉक्यूमेंट कर लें.
2: सच है, कभी अपने आसपास देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा जो अपने आप में एक इतिहास समेटे होगा. लखनऊ से फैसल फरीद.
3: SBS हिंदी पर आज हमारे साथ शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आज के शो में हमने आपसे पूछा था कि 6 महीने 2026 के निकल चुके हैं और आपके हिसाब से अब कौन सा रेजोल्यूशन है जो आपका, जो आपने शुरू साल की शुरुआत में लिया था, वो आगे बढ़ पा रहा है या कहीं रुक गया. और बहुत लोग के मैसेजेस आए थे और आप सबके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक आखिरी गाने से मैं आपसे लूंगा अलविदा और इस वादे के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे. और तब तक SBS हिंदी सुनते रहिए और एंजॉय करिए. मैं हूं नबील, आपसे मिलेंगे फिर से.